0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या? या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

Lots of right answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए. इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग. मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ. आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है. @RJ कनेगा इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है.

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ एट आरजे करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वी ऑल फील लाइक कि बस यार हो गया, अब कुछ और. एंड दैट्स व्हेन आई लुक फॉर इंस्पिरेशन हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. थिंक अबाउट आर्टिस्ट लाइक हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक, वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna Ni Begane Baro Krishna Ni Begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hariharan ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound आज भी रेवोल्यूशनरी है. 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक as Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय, माय साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी है. इट्स अनूप जैन सॉन्ग, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से, एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन, 3 पोजीशन ऊपर जम्प करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: with DJ Bridget.
1: वीकेंड ऑफिशियली एक्टिवेटेड, अटेंडेंस लग गया है। कल तक जो लोग बोल रहे थे मैं घर पे चिल करूंगा, वो अब मिरर के सामने आउटफिट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। क्लब मिर्ची शुरू होता है यही से विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। हमारे साथ पार्टी का थर्मोस्टैट फुल हाई, स्ट्रेच कर लो, डांस फ्लोर पे नीज की वारंटी खत्म होने वाली है। इट्स टाइम टू लीन ऑन विद मेजर लेजर, लेट्स गो।

जाइए सजना, वीकेंड पे रिलेशनशिप स्टेटस सिंपल है, कमिटेड टू द डांस फ्लोर, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटेगा, टाइम टू लेवल अप, यस लेवल।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। पार्टी रूल नंबर वन, कैलोरीज डोंट काउंट जब प्लेलिस्ट डेंजरस हो। और यहाँ पे प्लेलिस्ट सीरियसली एवरी वीकेंड कत्ल करती है।

0: सपनों में रोजे आए आ जिंदगी में आना सन
1: जाने जाना क्रश को इम्प्रेस करने का एक ही तरीका है डांस मूव्स किलर होनी चाहिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका ये दो पत्ती आपको नचा के ही छोड़ेगी लेट्स गो

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

वेलकम बैक क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंते का वीकेंड स्क्वाड आते हैं इंसान बनके जाते हैं हूलिगन बनके। चलो मस्तों का झुंड लेट्स गो।

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ। वीकेंड मेमोरीज और ब्लरी फोटोज, आइकॉनिक कॉम्बो। उस पे अगर इस वीकेंड पे आपका फर्स्ट किस है, नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू यू बाय हनी सिंह। लेट्स

टॉपिक्स का ट्रूथ पोस्ट 2 सेकंड एडिटिंग 2 घंटे क्लब मिर्ची में डीजे मिर्ची और योंतिका जो लोग गैलरी खोल के बैठे भाई इसमें तेरा घाटा अभी तो टाइम है डांस फ्लोर पे मचाने का।

0: वक्त मी मिर्ची और योंतिका पैर खुद ब खुद नाचेंगे क्योंकि हम हैं क्लब मिर्ची के धुरंधर्स। लेट्स गो
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन का आपके साथ मंडे का अलार्म और पार्टी का एंड दोनों इलीगल लगते हैं राइट और इन सबको इग्नोर करके हम बनते हैं क्रिमिनल एवरी वीक लेट्स गो।

संभालने का एक ही तरीका है, क्लब मिर्ची सुनो हमारे साथ, नाचो चिल करो एवरी वीकेंड। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ, और वीक इन कॉन्फिडेंस फुल बैटरी लॉजिक लो पावर मोड पे रख के चलिए चलते हैं शिवली के पीछे।

डीजे मिर्ची मिर्ची और योनिका चांदनी रातों में चांदनी का गाना, इससे ज्यादा अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। और क्लब मिर्ची कम्युनिटी में हम ऐसे रहते हैं जैसे इन द गेटो। लेट्स गो।

डिटेक्टिव को बुलाओ, there's a murder on the dance floor, क्लब मिर्ची विद DJ Richard and मिर्ची और यों दिखाओ। आज की रात पेन को इग्नोर करेंगे, कल सोचेंगे बस वाइब आनी चाहिए। लेट्स गो।

खतरों के खिलाड़ी धुरंधर ऑल ऑन द डांस फ्लोर जान से गुजरते हैं हम ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ओवर द डांस फ्लोर।

योर स्लीप दोनों गायब, जवा हो यारो तो अफकोर्स क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करो, लुट जाओ डीजे रिचर्डन मिर्ची और योर दिक्कत।

साथ प्यार आपका गहरा होगा। क्लब मिर्ची डीजे रिचर्ड के साथ, एंड इफ यू वांट टू गिव हिम अ शाउट आउट, ही इज देयर ऑन सोशल्स, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल। और मैं आपकी लाल परी, नाम है ओयोन दिगाई, वाई ए एन टी आई के ए। हिट मी अप एंड से हाय, आई विल से हाय बैक।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

यहाँ पे जायज है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका। एज बस नंबर है, एम्बैरेसिंग डांस मूव्स फॉरएवर। एंजॉय करेंगे हमारी सेकंड हैंड जवानी।

हिलना डुलना तो बनता है यार मेरे डोलना। म्यूजिक जो चल रही है क्लब मिर्ची पे, वो भी डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका के साथ। सो ऑल द बार्बी गर्ल्स टेक ऑफ योर पिंक हील्स, 'cause सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है।

क्लब में रुचि ऑलमोस्ट खत्म, मेमोरीज सेव कर लो, डिग्निटी वैसे भी नहीं बची है. डीजे रिचर्ड आउट. बट बिफोर वी गो, मिर्ची और योन देखा है विद द साइन ऑफ ट्रैक एंड इट्स कॉल्ड अराइवल. वेल दैट्स व्हाट यू एंजॉय ऑन आवर टू.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Avicii. It's hot.
1: किन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

फिश सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हरी जरा

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinner,

0: Mirchi, it's hot.
1: Free.

0: Radio Mirchi.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर festival में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया concept होता है you know दिवाली के time हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के time हम instruments के बारे में सोचते हैं computer की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं so many different ideas keep coming so जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims, वो Friday होगा. Jewish लोगों में वो Saturday होता है. Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है. Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलिडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलिडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू थिंकिंग व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम। बट इफ यू कांट, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

सर्वज्ञ शक्तन वत्सल सर्वशेषिन् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन् कृपाजल निधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तन वत्सल।

वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्च

तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे विल नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बीइंग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बीइंग बॉर्न और विष्णु बीइंग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफ कोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। Of course, festivals are not always religious. Religious, there can be also secular festivals. जैसे harvest time में जब harvest होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, these are not really religious festivals. These are related to agricultural cycles, crop cycles, harvest time, sowing the seed. तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर

0: birthdays are also not religious festivals, but they are festivals. So on the birthday, you are celebrated by your friends. So that is also a utsava. ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची.
1: द देवदत्त पटनायक शो. आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची, जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
3: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट,
3: राइट?
0: बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे, क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके अध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, हैज बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी, वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
3: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
1: On Radio Mirchi,
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलबाणं।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: ऑन रेडियो मिर्ची
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के टाइम पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टींग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मंगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.
4: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर अवतरण।

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पॉलिटिकल गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
2: The Devdutt on Radio Mirchi. The Devdutt Patnaik Show. क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हू इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
3: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप्स, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो late night loneliness, वो अकेलापन, और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस फिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From Bandar. Number 18.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17 इसमें

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई, कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में हो, इट काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की, लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड, ये कोई नहीं बोलता हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा, एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवर थिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना। नंबर 16।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 50. फुर्सत

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बॉस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी,

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि YouTube कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14।

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, वो जिनके लिए म्यूजिक बस रन टाइम होता है, आए गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे यहाँ, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं। एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है, सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग्ड वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।

It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is Meherban by Shilpa Rao and Ash King. Special request song.

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

माशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहां प्रीतम दा की साइड पर हूं, हाँ उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is Hafte. Main aur Tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। ननाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ अ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे ब्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर नेम विच इज क्लोज टू माई हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और एआर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनाज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाए, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट Only on Mirchi. It's hot. Number 3.

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah. or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: उसको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही
2: मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Love is the best, AJ.

0: Mirchi, it's hot.
1: O channe di kuri, o channe di kuri.

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय।

इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यू तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: चुप है बादशाह। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट। न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मामोस टैन इन हिंदी।
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर करे डाल

0: का इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या? या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है। Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

0: आई नो यू नो द राइट आंसर, साइड वाले को भी बताओ @RJKanika पर, जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: Number 8.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. एंड दैट्स व्हेन आई लुक फॉर इंस्पिरेशन हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. थिंक अबाउट आर्टिस्ट लाइक हिमेश रेशमिया, अदनान सामी, उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलिवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग और नंबर 5, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begale baro Krishna ni begale.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hari Haran ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound aaj bhi revolutionary hai. 1996 mein unka debut album aaya jiska part hai ye गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक एज कृष्णा, एज जीसस, एज अल्लाह, एज एनीवन. एंड दिस इज वेयर दिस सॉन्ग becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that उन्होंने indie pop music को सिर्फ romance या dance तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने prove किया that independent music thoughtful भी हो सकता है, spiritual भी हो सकता है, and yet mainstream audience से connect कर सकता है. हमने radio sets की volume बढ़ा लीजिए. This is a song जिसको सुनके मैं तब भी जवाब ढूंढ रही थी, आज भी जवाब ढूंढ रही हूँ. Colonial Cousins का 1996 का track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.

0: क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है व्हिच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय माय साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी है. इट्स अन अनूप जैन सॉन्ग, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन, 3 पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. Gaana number 18 is hafte kyun maza aa raha hai from Bandar. Number 18.

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में वो काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की। लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड। ये कोई नहीं बोलता, हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा। एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवरथिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना।
3: नंबर 16।

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग, लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बॉस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशंस नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: ना तनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी,

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 13.

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म इंडस्ट्री में दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी, वो जिनके लिए म्यूजिक बस रन टाइम होता है, आए गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे यहाँ, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन्स रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं। एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है, सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग्ड वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।

0: It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is Meherban by Shilpa Rao and Ash King.
1: Special request song.

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.